0: गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
1: तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ, सच है, तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
1: ग्राम चरौदाबार नवापारा अभ्यारण्य जिला बालोद छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर।
0: और छत्तीसगढ़ रूपापाली बसना से हीरालाल जगत, देवेश, ब्रिजेश जगत और एकता लावण्य कश्यप।
1: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन।
0: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
1: और छत्तीसगढ़ पलारी से ही प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की अनूठी और रहस्यमयी दुनिया के बारे में।
1: पिछले दो दिनों में हमने जाना था पेड़ पौधों के बीच के संचार की व्यवस्था के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और रोचक विषय पर।
0: जी हाँ श्रोताओं, आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जो हजारों हजार वर्षों से जीवित हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पेड़ मिस्र के पिरामिडों से भी पुराने हैं। और भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता जब अपने विकास के प्रारंभिक चरण में थी, उससे भी पुराने ये पेड़ हैं।
1: जी, ऐसे तो बहुत से वृक्ष हैं, लेकिन सबसे अधिक ज्ञात वृक्षों में से एक है ग्रैन एबियलो। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसकी आयु 5000 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये लैटिन अमेरिका के चिली देश में है। ये नॉन क्लोनल पेड़ है। अजीत जी, श्रोताओं को ये भी बता दें कि नॉन क्लोनल पेड़ किसे कहते हैं।
0: विमलेश जी, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार नॉन क्लोनल पेड़ उसे कहते हैं जिसका एक ही तना होता है। इसके तने से कई और नए तने नहीं निकलते हैं, यानी ये अपना क्लोन नहीं बनाते हैं। सरल उदाहरण से समझिए, यदि एक आम का पेड़ एक गुठली से उगा और 200 वर्षों या एक निश्चित अवधि तक जीवित रहा तो ये नॉन क्लोनल पेड़ है, क्योंकि इसके तने से कोई और नया पेड़ नहीं उगा। लेकिन इसके विपरीत,
1: क्लोनल पेड़ों में एक ही मूल वृक्ष से कई नए तने और पौधे निकलते रहते हैं। जैसे भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाला बरगद का पेड़, ये पेड़ अपना प्रतिरूप या क्लोन बना लेता है। बरगद की शाखाओं से ही बहुत सारी हवाई जटाएं निकलती हैं। ये भूमि तक पहुंच जाती हैं और उनसे फिर नई शाखाएं निकलने लगती हैं। बांस भी क्लोनल पेड़ों में गिना जाता है, क्योंकि इसके प्रकंदों से कई नए नए बांस के पौधे पनपने लगते हैं।
0: जी विमलेश जी, जब बरगद के पेड़ की बात आई तो मुझे अपने देश के ग्रेट बैनियन ट्री की भी याद आई। ये कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन में स्थित है।
1: बिल्कुल,
0: बताते हैं कि इसकी आयु 300 से भी अधिक वर्ष आंकी गई है।
1: जी,
0: हवाई जटाओं या एरियल रूट्स के कारण ये पेड़ इतना फैल चुका है कि देखने में एक विशाल जंगल की तरह दिखाई देता है। है तो ये एक ही पेड़, लेकिन इसने अपने हजारों क्लोन बना लिए हैं।
1: जी जी जी, विशालता की दृष्टि से एक अद्भुत पेड़ है। इसका मूल तना बिजली गिरने से नष्ट हो गया था, लेकिन अपनी हजारों सहायक जड़ों के कारण ये आज भी जीवित है। जी, तो आज हम बात कर रहे थे दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। एक और पेड़ है जिसका नाम है मतुशेलाह। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसकी आयु लगभग 4850 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये ग्रेट बेसिन ब्रिसल पाइन कोन प्रजाति का पेड़ है। ये मानव जाति के अधिकांश लिखित इतिहास से भी पुराना माना जाता है।
0: माना जाता है श्रोताओं कि इस पाइन वृक्ष का अंकुरण संभवतः 2800 ईसा पूर्व हुआ होगा। विमलेश जी, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की आयु की, तो हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना भी बहुत रोचक होगा ना कि पेड़ों की आयु भला कैसे आंकी जाती है।
1: जी, पेड़ों की आयु को जानने के लिए कई वैज्ञानिक तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है पेड़ों के वार्षिक वलयों की गिनती। इन वलयों को ट्री रिंग्स भी कहते हैं। आपने किसी कटे हुए पेड़ के तने को यदि देखा होगा कि उसमें कई वलय, छल्ले या रिंग्स दिखाई पड़ते हैं।
0: जी, माना जाता है कि एक छल्ला एक वर्ष को दिखाता है। पेड़ के तने में जितने छल्ले होंगे उसकी आयु लगभग उतने वर्षों की होगी। लेकिन विमलेश जी, फिर तो किसी पेड़ की आयु को जानने के लिए उसे काटना होगा।
1: जी नहीं अजीत जी, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक एक विशेष विधि से तने के भीतर से पतली लकड़ी का नमूना निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इससे पेड़ों को काटना नहीं पड़ता।
0: और हाँ श्रोताओ, कभी कभी तने की परिधि से भी पेड़ की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए उस पेड़ की वृद्धि की औसत दर का पता लगाना पड़ता

चंदन दास की गाई इसी गजल के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये छिंदवाड़ा केंद्र है एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कीजिए स्वीकार नमस्कार विमलेश का उमंग कार्यक्रम में
3: और अजीत का भी जोहार गांव गणित।

0: है। विमलेश जी, एक और विधि है जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं।
1: जी अजीत जी, बहुत पुराने या विशेषकर मृत पेड़ों की लकड़ी के नमूनों से वैज्ञानिक उसकी उम्र का पता लगाते हैं।
0: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि पेड़ों के वलय मात्र उम्र ही नहीं बताते, बल्कि ये भी बताते हैं कि किसी विशेष वर्ष में मौसम कैसा था। चौड़े वाले रिंग्स संकेत देते हैं कि उस वर्ष में अच्छी वर्षा हुई थी, जबकि सकरे वलय सूखा या मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का संकेत देते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी विश्व के कुछ दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा की उनकी आयु जानने की विधियों के बारे में। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: आज का प्रश्न है, क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
1: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
0: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है सबसे प्यारा।
1: हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में भारत भूमि के गौरव और विविधता का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है और बताया गया है क्यों हमारा देश सभी अन्य देशों से अनूठा है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी है तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम

आर्यों ने उन्हें दस्यु या दास कहा है। आर्य लोग मुख्यतः पशुपालक थे। ये लोग अपने साथ गाय, बैल, भेड़ बकरियां और घोड़े लेकर आए थे। आर्यजन पहले पहले आज के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में आकर बसे थे। इस क्षेत्र में सरस्वती नाम की एक नदी बहती थी जिसमें सदा जल रहता था। ये नदी अब सूख गई है। ऋग्वेद की अधिकतर ऋचाओं की रचना इसी नदी के तट पर हुई थी।

इस काल में समाज चार वर्णों में बंटने लगा था। ये वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना भी इसी उत्तर वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना भी इसी समय हुई थी। आर्यों का जीवन घुमक्कड़ी दशा से स्थायित्व की ओर बढ़ रहा था। कृषि अब उनका प्रमुख धंधा बन गया था। आइए चलते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्य

0: वो काली गाय कैसे धुली तुमने? ये तो लात मारती है।
1: इसने मेरी काली और लाल दोनों मटके तोड़ दिए। हाँ
2: अरे धृताची।
3: हाँ भैया।
2: तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा दूध से भरी मटकी माँ को दे।
3: अच्छा।
0: अरे अरे अरे देवदत्त, तुम उस घोड़े को संभालो।
2: ये काम आप प्रवाहन को ही सौंपिए, मैं बकरी के इस नवजात बच्चे को संभाल रहा हूँ।
4: अरे भाई ये क्या हो रहा है आज? अभी तक सभी लोग पशुओं की बातचीत में ही लगे हो। इन्हें चराने नहीं ले जाना क्या? अब तो सूरज भी निकलने वाला है। अरे देवदत्त
2: जी,
4: तुम्हारा वो नया खेत बनाने का काम पूरा हुआ या नहीं?
2: पिताजी बस थोड़ा सा ही काम बाकी है। वो उस खेत में बहुत झाड़ झंकार थे ना, तो उन्हें काटते काटते हमारी लोहे की कई कुल्हाड़ियां टूट गई। यज्ञ दत्त उन्हें ठीक करवाने बढ़ईयों और लोहारों के घर गया है। उसके आते ही हम खेत चले जाएंगे।
4: ठीक है ठीक है। और हाँ, तुम वो बड़े बैलों वाली गाड़ी भी ले जाना।
2: जी पिताजी।
4: उसमें रखकर कुछ शीशम के लट्ठे ले आना।
2: ठीक है।
4: टूटे बाड़े को भी ठीक करना है, कल वो काला घोड़ा वहां से निकल भागा था।
2: जी पिताजी, गाड़ी तो हमने पहले ही तैयार कर ली है।
4: अरे प्रवाहन।
1: जी पिताजी।
4: तो मुझे बहुत सुस्त और ढीले लग रहे हो।
1: वो पिताजी,
4: अजीत और हरिराज भी ढीले हो गए हैं। तुम्हारे खेतों की जुताई भी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ पता भी है, कार्तिक महीने के भी कुछ दिन चढ़ गए हैं।
1: जी वो
4: तुम्हारे चाचा के परिवार ने तो

0: अपने खेतों में गेहूं और जौ बो भी दिए।
1: पिताजी, हमारे खेत भी गेहूं और जौ की बुआई के लिए तैयारी समझिए, बस एक दो जुताई और करनी है। क्यों अजीत?
2: हाँ हाँ पिताजी, इस बार मैंने बहुत ज्यादा काम किया है और इस साल हमारी उड़द और धान की खेती बहुत अच्छी हुई है। अरे हाँ, अब तक तो हम उसकी कटाई और मड़ाई में ही लगे रह गए थे, क्यों देवदत्त?
3: हाँ हाँ पिताजी। और
1: और पिताजी, हम तो अपने साथ हरिराज और शत्रुमर्दन को भी ले जा रहे हैं।
2: हाँ
1: आज हम चार चार बैलों वाले तीन हलों से जुताई करेंगे। खेत बस तैयारी समझिए।
0: नहीं, हरिराज और शत्रुमर्दन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे खेतों में।
1: जी
0: उन्हें कल हस्तिनापुर जाना है।
2: पर क्यों पिताजी?
0: वहां महाराजाधिराज जन्मेजय ने यज्ञ का आयोजन किया है, इन्हें तो जाने की तैयारी करनी होगी। वहां रथों की दौड़ भी होगी।
2: पिताजी, हमारे जाने की पूरी तैयारी हो गई है।
3: जी पिताजी।
2: हमारा रथ और घोड़े दोनों तैयार हैं।
0: बहुत अच्छा।
2: और हाँ पिताजी, हमने अपने घोड़ों को भी खूब खिलाया पिलाया है, और पता है अब तो वो भी बहुत फुर्तीले हो गए हैं।
1: पिताजी, देवों की इच्छा हुई तो रथों की दौड़ में इस बार हम ही जीतेंगे।
2: हाँ पिताजी, हम ही जीतेंगे।
0: पिताजी, देव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। देखो, तुम लोग अपने साथ कुछ गेहूं, जौ और चावल ले जाना।
2: जी पिताजी।
0: सम्राट ने यज्ञ के अवसर पर भंडारा भी चला रखा है।
2: अच्छा पिताजी।
0: सभी वर्णों के लोग भोजन कर रहे हैं। यही नहीं, गुरुकुलों के ब्रह्मचारी, गृहस्थ और साधु संन्यासी भी यज्ञ में बुलाए गए हैं।
1: अच्छा पिताजी, हमने अन्न के साथ साथ महाराज को भेंट देने के लिए माँ के द्वारा बुना हुआ उत्तरीय भी रख लिया है। बहन धृताची ने इस उत्तरीय पर सोने के तारों से बहुत सुंदर कढ़ाई भी की है।
4: हाँ। ये मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है और कौन कहाँ जा रहा है?
0: आओ पुत्री, आओ, तुम्हारे ये भाई हस्तिनापुर जा रहे हैं।
4: पिताजी, इनसे मेरे लिए सोने के कंगन मंगवा दीजिए ना। सुना है हस्तिनापुर के सुनार बहुत सुंदर कंगन बनाते हैं।
1: चल चल, बढ़िया ही कंगन वाली। पिछले वर्ष तो तुझे सोने के कुंडल और हार ला कर दिए थे मैंने।
3: और क्या,
1: अब कुछ नहीं लाऊंगा। हाँ
4: मेरे अच्छे भैया, मेरे प्यारे भैया, देखो मैं तुम दोनों का कितना ध्यान रखती हूँ। मैंने छुपा छुपा कर तुम्हारे घोड़ों को घी भी पिलाया है।
1: अच्छा अच्छा, चल ठीक है, ले ही आएंगे। अब तो खुश।
0: अरे ये तो खुश हो गई, पर तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। हाँ, अपने हथियारों को ठीक ठाक करके रख लो।
2: जी पिताजी।
0: कल सूर्योदय से पहले ही चल देना। आजकल इस रास्ते वाले वन में शेरों, चीतों और तेंदुओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया है। अंधेरा होने से पहले ही वन पार करके अपनी बुआ के गांव पहुंच जाना।
1: जी पिताजी, हमने लोहे की फाल वाले भाले और लोहे की नोक वाले पहले तीर भी रख लिए हैं। भला हमारे इन तीरों के सामने वो क्या टिकेंगे?
2: और पिताजी, एक परिव्राजक के द्वारा हमने अपने फुफेरे भाइयों को भी सूचित कर दिया है, वो भी हमारे साथ रथों की दौड़ में हिस्सा लेने जाएंगे।
1: भैया, सुना है इस बार रथों की दौड़ में भाग लेने के लिए कौशल, काशी और विदेह से भी रथ आ रहे हैं।
2: हाँ।
1: इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा आयोजन है।
0: हाँ ये तो है।
3: हाँ, बड़ा आनंद आएगा।
5: और शुरू हो गई रथों की दौड़।

0: इस बार तो हमारा रथी जीतेगा।
1: अरे हमने भी पूरी तैयारी की है,
0: याद है पिछले वर्ष रथों की दौड़ में कितना आनंद आया था। मित्र क्या इस बार भी तुम्हारे गांव का वही रथ दौड़ाने वाला आया है?
1: अरे नहीं भाई नहीं, इस बार दूसरा रथ दौड़ाने वाला आ रहा है। गांव में होने वाली प्रतियोगिता में तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया था।
0: चलो देखते क्या होता है।
2: सुने सुने सुने, यज्ञ के आयोजन के इस अवसर पर अब प्रारंभ होती है रथों की दौड़।
3: अरे वो देखो वो देखो
0: क्या
3: रथ की दौड़ शुरू हो गई। अरे वो देखो तो रेस शुरू हो गई।
0: क्या बात है, सजीले सवार है।
3: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, देखो देखो वो देखो बीच वाला रथ
4: वर्ष के रथों की दौड़ के आयोजन में विदेह का रथ विजेता घोषित किया जाता है।

ये आयोजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, इसमें राजा की शक्ति की परीक्षा भी होती थी। उत्तर वैदिक काल में राज्यों का विस्तार हो रहा था। राजा की शक्ति, पदवी और दबदबा बढ़ गया था। करों की वसूली होने लगी थी। राजकोष में खूब धन जमा होने लगा था। राजकाज चलाने में पुरोहित, सेनापति, रानियां और कुछ अन्य अधिकारी भी मदद करते थे। ग्राम पंचायतें प्रशासन संभालती थी। राजा को गांव से बड़ी मदद मिलती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के मौके पर गांव और कबीलों से लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाती थी। शिक्षा के लिए बालकों को गुरुकुल में जाना पड़ता था। गुरुकुल वनों के शांत और सुरम्य स्थानों पर बनाए जाते

0: गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी मेरी बात को ध्यान से सुने, सावधान होकर सुने, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार दे रहा हूं। और समाचार ये है कि आज शाम तक आचार्य शाकल्य यहां पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसी बात को दोहराने के लिए मैं यहां इसलिए उपस्थित हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे आश्रम की जो प्रतिष्ठा और परंपरा रही है वो सर्वदा बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि स्वागत कार्य के लिए जिस ब्रह्मचारी को जो भी कार्य सौंपा गया है उसे पूरा करने के प्रयास में तुरंत लग जाए। अंत में मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने मेरी बात को पूरी शांति से सुना और समझा। धन्यवाद।
1: मित्र, कुलपति का आदेश सुना तुमने? कैसा आदेश मित्र, मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। मैं तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में ही उलझा था कि आज एक और समस्या आ गई। गुरुजी कह रहे हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूरे में से पूरा निकाल देने पर भी पूरा ही बच जाता है।
2: भोले ब्रह्मचारी, अब इस उलझन को छोड़ो और कुलपति के आदेश पर ध्यान दो और आचार्य शाकल्य के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। सुना है आचार्य आयुर्वेद आदि अनेक विद्याओं के पंडित हैं।
1: अच्छा,
2: वे हमारे गुरुकुल में कुछ दिन रहकर छात्रों को इन विषयों की विशेष शिक्षा देंगे।
3: अरे वो देखो कितना सुंदर घोड़ा है।
4: अरे हाँ, चलो पास से देखते हैं।
3: हाँ, चलो चलो।
4: अरे ये देखो कितना अच्छा घोड़ा
1: है। वाह, अरे हाँ, इसकी काठी तो देखो कितनी सुंदर है।
4: इसे पकड़ लेते हैं। हाँ, इसे पकड़ लेते हैं।
3: चलो चलो।
4: अरे वाह, अरे अरे, चलो इसे पकड़ लेते हैं।
3: ये पकड़ा।
1: अरे ये कोलाहल कैसा है?
5: छोड़ दो। ये महाराजा धीराज जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। तुम्हें इसके मस्तक पर सम्राट का विजय पत्र नहीं दिखा? इस घोड़े की सुनहरी लगाम और काठी तो दूर से दिख जाती है। छोड़ दो। शीघ्र छोड़ दो, नहीं तो हमारे तीनों के तीखे प्रहार सहने पड़ेंगे।
1: अरे ये तो हमारे गुरुकुल के एक क्षत्रिय कुमारों ने घोड़े को पकड़ रखा है। अरे अरे, इन पर तो सैनिकों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा है।
3: अरे चलो चलो, भाग चलें। आचार्य को बता दें, कहीं क्षत्रिय कुमार सैनिकों से युद्ध न कर बैठे।
1: अरे रुको तो सही। अरे देखो,
3: क्या
1: आचार्य तो वहीं पहुंच गए हैं। और हाँ, वो देखो, आचार्य की आज्ञा मानकर

0: क्षत्रिय कुमारों ने उस घोड़े को छोड़ भी दिया है।
1: हाँ, अच्छा हुआ संकट टल गया। अब ये सैनिक इस घोड़े को सारे राज्यों में घुमाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे।
0: हाँ।
1: जहाँ अश्वमेध यज्ञ करके महाराज जन्मेजय चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे।
0: हाँ।
1: उनका प्रभाव कीर्ति और ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी।
2: और इसी तरह राजा की शक्ति और सत्ता धीरे धीरे बढ़ती गई।

0: कबीले के सरदार से वो चक्रवर्ती सम्राट बने, फिर उनके बेटे सम्राट बने और फिर उनके बेटे। इस तरह राज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त हो गया और ये सम्राट एक काल को दूसरे काल से जोड़ते चले गए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल, और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी का। ये छिंदवाड़ा केंद्र है FM 102.2 MHz पर।
5: मुझे अपनी मम्मी के जन्मदिन पर आकाशवाणी से बधाई देना है, क्या करूं?
6: नो टेंशन, इसके लिए कुकड़ा हिल्स आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा में संपर्क करो। और हाँ, अगर शादी या शादी की सालगिरह, त्योहारों की शुभकामना या किसी विशेष अवसरों पर किसी को बधाई देना चाहते हो तो भी आप आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा में संपर्क कर सकते हैं।
5: अच्छा, मेरे चाचा बर्तनों की दुकान खोल रहे हैं, उसके लिए भी?
6: हाँ हाँ, अपने प्रतिष्ठान के शुभारंभ पर भी आप बधाई दे सकते हैं या जानकारी दे सकते हैं। तो विज्ञापन के लिए संपर्क करें
5: कुकड़ा हिल्स आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा।
6: हाँ।
7: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
8: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
7: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
8: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
7: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
8: 8700001-4242।
4: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। कुछ ही पलों में विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: estarán.
1: रंग तरंग कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं बेगम अख्तर की गाई इस गजल से।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

वर्षा ऋतु एल्बम से आप सुन रहे थे तलत महमूद का गाया ये गीत। रचना थी मुरली मनोहर स्वरूप की, संगीत भी मुरली मनोहर स्वरूप का था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। लीजिए पेश है तलत अजीज की आवाज में ये गजल। कलाम है कतील शिफाई का, मौसीकी तलत अजीज की।

0: इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

जागीर को क्यों देखते हो और मेरे पांव की जंजीर को क्यों देखते हो। तुम तो कहते थे मेरी शक्ल से नफरत है तुम्हें, मुझसे छुपकर मेरी तस्वीर को क्यों देखते हो। छुरी से तीर से

0: की तो अदा बन गई, नजर फेर ली तो कजा बन गई, नजर जब उठी मेहरबान हो गई, नजर जब मिली तो जवां हो गई, जो पलटी तो दिल की जबां हो गई, जो बदली तो एक दास्तां हो गई। नजर से हमने नजर को एक दिन नजर मिलाते नजर से देखा, नजर जो पहुंची नजर तक उनकी, नजर झुकाते नजर से देखा।
1: क्या बात है,

झूठा तुम्हारा प्यार भी झूठा, तुम्हारी जात भी झूठी, तुम्हारे होंठ भी झूठे, तुम्हारी बात भी झूठी, तुम्हारा हर इरादा हर तमन्ना हर गिला झूठा, तुम्हारे फूल झूठे बाग झूठा, आशियां झूठा, वफा झूठी जफा झूठी, सितम झूठा करम झूठा, कसम है सर से लेकर पांव तक तू ऐ सनम झूठा, तुम्हारा नाम झूठा, तुम्हारा

अब हमको फुर्सत नहीं, मैं तुम्हें याद करने की जिद छोड़ दूँ।

मोहब्बत का दस्तूर है, हुस्न की हर अदा हमको मंजूर है। अदा पर नाज पर हर आदमी कुर्बान होता है, जो अच्छी चीज होती है उधर ही ध्यान होता है। किया था वादा के कल आएंगे चराग जले, और तमाम रात चरागों से दिल के दाग जले। ये दर्द भी दौलत है, ये दाग भी दौलत है, ये जितनी भी दौलत है सब तेरी बदौलत है। बराबर खफा हो बराबर मनाए, न तुम बाज आओ न हम बाज आए, क्योंकि भीगी जुल्फों को शानों पर झटक कर छोड़ देते हैं। बरसने वाले बादल अपना भी रुख मोड़ लेते हैं, और ये हुस्न वाले

नजर झुकाओ, हसीनों का एहतराम करो, है मेरा नाम जवानी मुझे सलाम करो, जो हुस्न चाहे तो लग जाए आग पानी में, अजी किसी हसीन को देखा भी है जवानी में, शमा ने आग रखी, शमा ने आग रखी सर।

0: प्यार सच्चा है तो फिर तुम मुझे रुसवा न करो, चांद ऊंचा।
1: डाकू हसीना फिल्म की ये कव्वाली आप सुन रहे थे दिलावर बाबू और साथियों की आवाजों में। इसी के साथ आज का रंग तिरंगे प्रोग्राम खत्म होता है।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने

0: भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया, जो समानांतर यात्राओं से एकीकृत भविष्य के लिए तैयार साझेदारी में परिवर्तित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र, बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता की थी, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एबीवीपी के सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के सत्र में 0.7% की बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 561 अंक बढ़कर 77,065 पर और निफ्टी 179 अंक की बढ़ोतरी के साथ 24,061 पर था। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मौसम फिल्म के गाने से। लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाजें हैं, गुलजार के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आपकी कसम इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर यह है कार्यक्रम यादों की महफिल। खिलौना फिल्म का

खिलौना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और आज है जाने माने अभिनेता संजीव कुमार का जन्मदिन। अब आपको सुनवा रहे हैं दस्तक फिल्म का ये गाना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल मदन मोहन का संगीत, आवाज़ मदन मोहन की।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए अब सुनते हैं महेंद्र कपूर, आशा भोसले, सुषमा श्रेष्ठ और साथियों की आवाजों में ये गाना फिल्म पति पत्नी और वो।
1: ठंडे ठंडे पानी से।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विधाता फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सुरेश वाटकर, अनवर और साथियों की आवाजों में। रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये